0: शिव नारायण
1: भगवान की देवेश्वर महादेव माधव कृष्ण भगवान सनातन धर्म की
2: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी श्री श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

0: जय।
1: श्री सद्गुरु स्वामी माधवानंदजी गुरुदेव
0: की जय।
1: विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव
0: की जय।
1: श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय।
2: Ja,

भगवान की जय। देव पुरुष महादेव की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरुष महादेव की जय।

0: भगवान की जय। श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।
1: जुगा जुगा

बोले श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधव।

की जय। ओम शलभ पुरुष महादेव की जय। देवात देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। ओम

ओम शलाकुर्जी महादेव की जय। द्वादेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों

हत्ता की, गौ हत्या, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आप सब भक्तों की, हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सद्गुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।